0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: महाते पांडव भाषण कुमा भाषण कालिका घोर से गुण रदाना बहरू नगमा रावण नासिका संचल भई घुमनी दस इंद्रिय तिम्रा भजन मा भोलोस

गाड़ी खाए परिवार अरे गाड़ी फुलाए चलो जगत तेरो नाम ढोकरे झोकरे को पुत्र सुक्ले विराट को घर में यो बातें पकाउने।

जंजो वंशी ने राजे का लानो जाइनो लानो जाइनो ए कृष्ण लानो जाइनो जंजो वंशी ने राजे का लानो जाइनो।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: हजुर बुबा नमस्कार।
2: नमस्कार नानी। नमस्कार।
1: के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ?
2: सन्चै छु नानी।
1: अनि यो वर्ष तीर्थ यात्रा नजाने बा?
2: तीर्थ चाहिँ जाने भनेको नानी, तर कुन तीर्थ जाने भनेको?
1: जस्तै जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम, द्वारिकाहरू पर्छन्।
2: ए उसो भए यी धामहरूको चाहिँ दर्शन गर्ने मेरो जीवनको ठूलो अभिलाषा थियो नानी। बरु कहिले र कसरी जाने हो सबै कुरा जानकारी पाउन त।
1: हजुर हुन्छ बा, सुन्नुहोस् है त।
3: दक्षिण भारतका प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिङ्ग तथा तीन धाम यात्रा हुँदैछ। प्रमुख दर्शनीय स्थलहरू नेपालतर्फ जनकपुर धाम, लुम्बिनी कपिलवस्तु, सेजी सातसो धाम नवलपरासी, देवघाट धाम चितवन, पशुपतिनाथ काठमाडौँ। भारततर्फ हरिहर क्षेत्र तर्पण पटना, मातृ मोक्ष पिण्डदान, पुनः पुनः मा श्रद्धा स्थल गयाजी, विष्णुपद दर्शन, बैतरणी नदी स्नान तर्पण, वैद्यनाथ धाम शिव सागर पञ्च स्नान, गंगा सागर तथा कपिल मुनि र कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली दर्शन, जगन्नाथ पुरी साक्षी गोपाल दर्शन सागर स्नान, मल्लिका अर्जुन श्री शैलम तिरुपति बालाजी, श्री रंगम कावेरी रामेश्वरम दर्शन, बाइस कुण्ड स्नान, कन्याकुमारी लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मन्दिर दर्शन, भीमा शंकर त्रिअम्बकेश्वर शिरडी साई बाबा ग्रीष्मेश्वर दर्शन, नर्मदा नदी स्नान ओमकारेश्वर, ममलेश्वर उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन, चोटिला चामुण्डा भगवती, द्वारिका पुरी द्वारिकाधीश दर्शन, गोमती गंगा स्नान तथा पिण्डदान, नागेश्वर गोपी तलाउ भेट द्वारका, बिन्दु सरोवर, मातृ गया पिण्डदान, पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म सरोवर, अम्बा देवी दर्शन, वृन्दावन मथुरा गोकुल रमण रेती, काशी विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका स्नान पिण्डदान, चौरासी घाट दर्शन, प्रयागराज अन्तिम गंगा स्नान, श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन गरी नेपाल प्रवेश। खाना बस्न अटो रिक्सा डुंगा सहित सम्पूर्ण लागत 1,20,000 लाग्नेछ। समय अवधि 42 दिन रहनेछ। प्रस्थान मिति 2083 साल माघ 5 गते। थप जानकारीको लागि सम्पर्क विष्णु अधिकारी, सम्पर्क नम्बर 9841870793, 9841870793, सादो बाटो चरीको दोलाखा।

949924 98449943 98146999945 98446956550 आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिल्ला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: 上。嗯，嗯，对。ऐसे अपने फेर आ बेर बे, मेरी प्यारी बुड़ी, मेरी मुंह दुन की बिचारा अरे सब मले बात पर ही बसी रोले, मुंह बजे कुछ खत्म की बोले, दिल और जार जगर माचे राग, खुद को मले इला, ओ पुष्टि का, मेरी बुड़ी, बुड़ी बंदर इस चले, ओ डार्लिंग, I love love I love you.My sato putla flying after see you. Amar ji bujhna tale dehre sato putla urja bhanya kya? Eh meri pran pyari malai maya gari jo timlai samjhi aipuge ma bhitra chhina jo. Dar bhanda badi malai timro lagcha bhara. Aaji raat me bhaye pani lordai aaye ghara.खोलन पोस्टिंग आमा दोगा खोलन हो बाहर जाड़ो कच्ची सारो अच्छी दोगा खोलन पोस्टिंग आमा दोगा खोलन हो बाहर जाड़ो कच्ची सारो मरने लाये हो
1: क्यों आज मैं दोगा खोलते खोलेगा एक दिन नहीं ना दूसरी दिन नहीं ना चलिए माते कोचा पक्की दोगना साइको कुकुर का झोल
0: अब साथी भाई बेटा केरी हल्का जीने पर मैले खाको कोदोको झोली तिमीलाई के भइगुण गर्यो गफ गफ गर्दै जाँदा दुई चार बोतल गयो दुख सुखको कुरा गर्दा आज रातो भयो
1: तिम्रो खुसी चल्छ यहाँ खोल्दिन भनेपछि खोल्दै खोल्दिन के सोचेछौ तिमीले मलाई

छ आड खाए नि सब खाए नि रक्सी भने रक्सी मिठो हाँसे रक्सी सब होटल बाल्ने पोक्छ चुरुस चुरुमा जा।

0: नमस्कार
1: रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैंडमा थपलो 7 मेगाहर्जबाट म बद्रीप्रसाद सागकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन् 2026 अक्टोबर 2 तारीख आश्विन 16 गते शुक्रबार षष्ठी तिथि
0: अब स्तुति गरौं
2: आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षेण कल्पयभरी।

धर्म कुमार कैसर्या श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसर्य ज्ञान हवस सुजन मनुन बढ़ाले पने कृति उज्ज्वल सुत सहित।

सीताजी कल भेटी फर्काउला फेर हमका हजुरमा गई विस्तार बिन्ती गरेर आइपसौला तिम्रो आहार भई। यति बात सुनि भन्न चिन्ती सुरसा मेरा मुखैमा पसी निस्कि जाऊ नै भने म बलले पक्रेर दरा घसी। भोकी मैलिँदा उरिन त कपाल खोरे कि केसाबुसाई लट्टा मात्र परे कि खाली भूमिमा रुँदै बसे कि तसाई राम चित्त दिएर मर्नु बढिया मानेर सीता तहाँ झन्नी मतलबली खरी भैनी पक्रेर गई महा। एक दिन हे हनुमान म चित्रकूटमा रामका नजिकमा थिया